0: पड़ो घर मई जुन व्यवहार काची जाती है एक एक काती नाशियो
1: साजन सदा जो भाई मो नमस्कार भन्नुहोस् कविता प्रसन्न मनले संक्षेपी भारत भयो।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

बीमा को लाभ दी आपको कमाई को लाभ लिने मौका आज बनो सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस को बीमा अभिकर्ता सानीमा रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस खुले रजियों।

नमस्कार रेडियो शैलम सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्जबाट हो म पति प्रसाद सागकोट आज विक्रम सम्बत 2083 साल अधिक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष सन 2026 जून 12 तारीख ज्येष्ठ 29 गते शुक्रबार द्वादशी तिथि अब स्तुति गरौं।

कपना बढ़ो सुस्ताई सुस्ताई सहजा भौतिक जगत में नहरदा नारी ले प्रगति पथ को।